0: ओरोरियम।
1: ओ
0: कहीं चले?
1: कहाँ?
0: कश्मीर?
1: इस महीने नहीं बाबा, बहुत बुकिंग्स हैं। अगले महीने?

0: मामी।
1: देव, आयशा सिगरेट पीती है।
0: मुझे पता है मां।
2: अरे वो कभी कभार ऐसे ही।
1: पता है तुझे? तेरे रूम के दरवाजे बंद रखती है वो। इस घर के दरवाजे आज तक कभी भी बंद नहीं हुए। ये इस घर में नहीं चलेगा।
2: अरे तो मां लिखती है अंदर। दरवाजा खोल के लिखेगी क्या? उसका भी घर है ना।
0: अच्छा करता हूं, मैं बोलता हूं।